अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

0: दास मॉर्निंग, दास मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

रेखा भारद्वाज की आवाज में बेहद खूबसूरत गाना बर्फी मूवी से फिर ले आया दिल। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनीष आगिया जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर। अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान, क्या हाल चाल है, कैसा रहा आपका संडे का दिन एंड फिलहाल क्या कर रहे हैं? सितंबर 7th मंडे का दिन है, क्या प्लान्स है सब जानना चाहती हूँ, एक एक चीज पूछ लेती हूँ। वेल, शुरुआत हम गुड मॉर्निंग से करेंगे, सो एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दीजिए, मुझे बता दीजिए कि जाग चुके हैं आप 3311106 पर।

0: मोहन कानन साहब की आवाज बेहद खूबसूरत है यार. एंड द सॉन्ग्स यू नो द सिलेक्शन वट एवर सॉन्ग ही सिंग्स इज समथिंग एल्स.
1: बड़ा समझ आया तेनु समझ न आया का तू कर दाए दिलदारियां.
0: सेम आई वुड से फॉर अमरिंदर गिल.

अच्छा चिमटी एकदम फटाफट से आ जाओ अब इसी बात पे 3311063 पर सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास मेरी जान.

0: back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
1: Hi there, friends. This is DJ Suketu. DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Jio Bindas.
2: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. Mohan Karan ki awaaz mein ove jaaniya from the movie Katti Batti, which was a cheap copy of A Walk to Remember. A Walk to Remember was a beautiful movie. Yaar. If you haven't watched, I would suggest Katti Batti ki jagah wo dekho, theek hai? Tanisha ke saath yahan Radio 106.3 FM par Bindaas Mornings chal raha hai yahan par. And we've got messages over here. Sandhu ji ka message aaya hai, kehte hain, good morning, wishing you a day as bright as your smile. May this week be everything you hoped for and more. Have a fantastic day. Love you all, friends. Jio Bindaas, Harpal Sandhu from Dukhan Sikrit. Thank you so much, Sandhu ji. Nazmi ji ka message aaya hai, good morning. When you are no longer able to change a situation, you are challenged to change yourself and that changes everything. Exactly. Aaj ka jo main motivation lekar aayi hu na, वो भी इससे रिलेटेड ही है. उसके लिए अभी वक्त है, रुक जाओ यार. अब्राड जी का मैसेज आया है, ही हैज सेंट मी अ वीडियो, गुड मॉर्निंग की. एंड शशिकांत पाटिल जी का मैसेज है, वो कहते हैं, गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस योर डे विथ मच हैप्पीनेस, जॉय एंड लव, थैंक यू सो मच. जुल्फी जी का भी मैसेज है, happy Monday, may your week be filled with good thoughts, kind people, happy moments and many blessings. Good morning. Good morning to each one of you and thank you so much for sparing few minutes of your time this morning to send me a good morning message. जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया है, सब पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सो कुछ पढ़ लेती हूँ, ठीक है. बट एक्नॉलेज सब हो रहे हैं. आई एम रीडिंग हियर ऑल द मैसेजेस, जस्ट ऑन एयर नहीं पढ़ पाती ना यार, क्योंकि फिर टाइम और फिर कमाल के गाने इंतजार कर रहे होते हैं. हाँ जी, पर ये सिलसिला जारी रखिए. 3311 1063 इज द नंबर. एंड दोज हु आर यू नो गोइंग टुवर्ड्स वर्क राइट नाउ, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई होप यू गाइस हैव एन अमेजिंग डे. एक प्यारा सा मैसेज आपकी तरफ से भी आ जाता तो बड़ा अच्छा लगता मुझे.
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या पर ये बात है,
4: कूल सॉन्ग.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Ready?
2: Ready
1: to learn,
2: yes.
1: To play,
2: absolutely
1: to grow
2: with Maserati.
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस Maserati फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक Maserati है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट

0: तनिशा।
1: जोधा अकबर मूवी से जावेद अली साहब की आवाज में जश्न बहारा, खूबसूरत गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिशा है आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। एंड मैंने कहा था ना कि जो मुझे मैसेज आया है नाजनी जी का, उससे से रिलेटेड आज का जो मोटिवेशन लेकर आई हूँ मैं, जरा सुने इसे।
2: What is the best advice you've ever heard or received?
3: Believe in yourself.
2: What is the worst advice you've ever heard or received?
3: It can't be done.
1: Exactly. You know, the best advice, believe in yourself, बहुत simple sound करता है, बहुत you know, छोटे से शब्दों में बहुत deep बात कह दी जाती है, लेकिन it is the hardest thing to do. और अगर आप ये कर रहे हैं तो I am really बस you know, moving towards it, तब भी हो जाएगा मेरी जान. And you can't do it is nothing यार, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लोगे, आप नहीं करना चाहते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत लगा लेगी भाई हो जाए ये काम आपसे, वो नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट विलिंगली। और से प्रेशर में आके, सोसाइटी के, फैमिली के और किसी भी प्रेशर में आके वो काम आपने कर लिया जो आप नहीं करना चाहते हैं, वो आप ज़्यादा वक्त तक कंसिस्टेंट नहीं रख पाएंगे। सो ऑलवेज फॉलो व्हाट योर हार्ट सेज एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। इफ़ यू हैव टेकन अप अ टास्क तो ये बिलीव होना चाहिए कि भाई मैंने ये लिया है ना, मैंने इसीलिए लिया बिकॉज आई कैन डू इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट। एंड दैट्स द you know, easier said than done, I know, because we all are sailing in the same boat, but that is the truth, that's how it works, right? Sending this beautiful track your way, KK ki awaaz mein Jannat movie se zara se, stay tuned, Andrea Bindas.

अनुप जैन की आवाज में अर्ज किया है. देर इज ए स्टोरी बिहाइंड दिस ऐसे कैसे वाली जो लाइन है ना, एंड अनुप जैन वो बता ही रहे थे तन्मय भट्ट के रिएक्ट्स पे और उन्होंने रोक दिया, बता ही नहीं दिया. यार मैं क्यूरियस बैठी हूँ इधर कि क्या स्टोरी है कि ऐसे लिरिक्स उन्हें लिखने पड़े. यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM. तनीषा है आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज. तो आज का सवाल मेरा ब्लैकबोर्ड स्टोरीज का है, व्हाट हैज सिटीज बट नो हाउसेस फॉरेस्ट एंड ट्रीज बट नो वाटर. व्हाट हैज सिटीज बट नो हाउसेस फॉरेस्ट एंड ट्रीज बट नो वाटर. एंड आपने मुझे बताना है इसका करेक्ट आंसर. 3311063 पर मैसेज कीजिए और इंतजार कर रही हूँ मैं. फिलहाल भेजूँ एकदम फ्रेश गाना आपके लिए वल्ला कॉकटेल 2 से. सुन रहे रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

0: टास मॉर्निंग, टास मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: नॉस्टैल्जिक हिट हो जाएगा इस गाने के साथ. एंड दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इज ऑल्सो कमिंग योर वे.
1: जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास मैं.
0: दिवाली सहाय ने मैजिक कर दिया भाई साहब. ये सभी कमाल गाने इस घंटे में आप सुनेंगे और साथ में ढेर सारी बातें भी करनी है और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं. आप मैसेज करके मुझे एक बार बता दो कि आप सुन रहे हो मुझे और कहां से सुन रहे हो. 3311 1063 पर सुन रही है रेडियो 11.6.3 FM जियो बिंदास मेरी जान.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Hi guys, this is Jurita Gandhi.
2: Radio Olive, I'm a number one.
1: You are listening to me on Radio Olive, Jio Binda.
2: Radio Olive, I'm a number one.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस्तन निशा को बिंदास मॉर्निंग में
5: मॉर्निंग
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
7: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Oromio movie se ban ki to gaan Sukhvinder Singh aur ek Bhardwaj ki awaaz mein only on radio all 106.3 fm tanisha aapke saath bindaas morning chal rahe hain yahan par So right now the temperature is 33 degrees and it feels like 36 degrees but Met Department ne bataya hai ki aaj jo hai bahut zyada humid ho sakta hai and yesterday also evening mein it was crazy humid matlab AC chal raha hai aur feel hi nahi ho raha hai you know you're sweating aap thoda sa movement kar lo aur band baj jayegi bhai kitni garmi hai So right now aaj bhi wahi rehne wala hai aisa forecast hai ki Doha mein 40 degrees pahunchega Dukhan aur Alwakra mein 41 Mesaid mein aur Doha Dukhan aur Alwakra mein 40 degrees and 41 degrees will be in Mesaid and highest hoga Abu Samra mein 44 degrees to agar aap वहाँ कहीं से जा रहे हैं तो देखिए ख्याल रखें एनी विच वेज कहीं से भी जा रहे हैं ख्याल फिर भी रखिए और बहुत सारा पानी पीते रहिए स्टे हाइड्रेटेड एंड यू नो लाइट खाना खाइए तो बिकॉज अगर हम ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं ऐसे वेदर में ना तो बहुत हैवी फील होने लगता है यू नो यू माइट गेट हेडेक और नौजिया सो उन चीज़ों से बचने के लिए लाइट खाना खाएं एकदम स्वस्थ रहें और मस्त रहें मेरी जान ठीक है और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

Back from vacation in your hometown. तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials. सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable. Nesto Hypermarket. 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.

शुदा मूवी से नजर नजर ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर एंड एक जो बेंचमार्क सेट कर रखा है ना कतर ने कि स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता एंड दैट्स अ फैक्ट यू नो नोबडी कैन डिनाई दैट ये हमने बार बार प्रूव किया है देयर इज अनदर चैंपियनशिप विच इज गोइंग टू हैपन इन कतर सो दोहा होस्ट करने वाला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप यस इट इज 2026 फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि सितंबर 8th से मतलब कि कल से 12 तारीख तक चलने वाली है इस इवेंट में 116 मेल एंड फीमेल यूनिवर्सिटी एथलीट्स जो हैं 21 कंट्रीज से आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए एंड दे विल बी कम्पीटिंग इन 16 वेट कैटेगरीज 8 फॉर वुमेन एंड 8 फॉर मेन और ये जो कंपटीशन है ये होगा एजुकेशन सिटी स्टूडेंट सेंटर मल्टीपर्पज हॉल में एंड इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द कतर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स फेडरेशन अंडर द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन 10th एडिशन है तो अगर आप चाहते हैं तो जाइए चेकआउट कीजिए मोराल बूस्ट कीजिए सारे एथलीट्स का और जो एफर्ट्स वो यू नो डालते हैं थ्रू आउट द ईयर टू कम्पीट इन सच कॉम्पिटिशन्स उसके लिए उन्हें चीयर करना उनका वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस विटनेस करना इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी और उनके लिए भी काफ़ी बड़ी बात है सो इफ़ यू वांट टू गो एंड चेक इट आउट प्लीज़ जाइएगा एंड सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे मीका सिंह की आवाज़ में और कुछ बहुत फ़नी किया है इलॉन मस्क ने जो कि काफ़ी लोग करना चाहते हैं वो मैं कुछ देर में आपको बताऊँगी सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
4: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर। सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.

0: मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे
3: Hello.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर। सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
2: नमस्कार मैं हूँ आर माधवन।
3: हाय दिस इज बिपाशा बासु।
4: हाय आई एम राजकुमार राव।
5: हाय मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
6: हाय दिस इज दिशा पार्डी।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।

0: गेरुआ फ्रॉम द मूवी दिलवाले और वरुण धवन का वो स्टेटमेंट कभी नहीं भूलता, दिलवाले इज लाइक इंसेप्शन. कभी कभी ना हम बोलने से पहले सोचते नहीं हैं और फिर उसका जुर्माना और हर्जाना हमें काफ़ी लंबे समय तक भरना पड़ता है. अभी रिसेंटली ही केम टू लेटेंट और वहाँ पर फिर से किसी ने ये स्टेटमेंट उनके लिए बोला एंड मुझे फिर से याद आया, देन आई लाव्ड लाइक एनीथिंग. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. एंड मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी ने लॉन्च किए हैं 38 न्यू वेटरिनरी एंड एग्रीकल्चरल ई सर्विसेज वाया ऊन ऐप. एंड बहुत सारी नई नई जो सर्विसेज हैं उनके लिए अब आपको हैसल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये सब इस ऐप पर आ चुकी हैं. एंड दिस लॉन्च इज़ द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव फॉर पब्लिक सर्विसेज, जो कि यू नो फोकस करती है इनहेंसिंग सर्विसेज, सिंप्लीफाइंग प्रोसेस एंड प्रोवाइडिंग देम इलेक्ट्रॉनिकली. तो अब आपको यू नो टाइम निकाल कर ऐसे ट्रैवल कर कर जाना नहीं पड़ेगा वहाँ पे और वेट नहीं करना पड़ेगा, सब चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी.
1: दिल निकल के साडा हो गया, ओए की करिए की करिए.
2: दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए की करिए.
0: क्या ही कर सकते हैं, ये गाना चला रही हूँ आप इस पे एंजॉय कीजिए बस.

0: ब्यूटीफुल है।
1: रुकी सुखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा, ठंडा ठंडा पानी तेरे आंगन का पी के छाया नशा बड़ा।
0: ये सभी गाने इस घंटे में सुनेंगे आप, सुन रही है रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑल ऑफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindas mornings chal rahe hain yahan par. And a very good morning to Mohammed, Asma, Yusuf ji, Princeton. And kuch der pehle jo maine Varun Dhawan wale statement ki baat kari thi, uspe Princeton is saying, Varun Dhawan is very smart. He meant na usko inception samajh aayi aur na hi dil wale. But it doesn't look nice to troll his own movie at the time of the release, so act it down. So yeah. True. And uske consequences wo abhi tak jail rahe waise. Well, I wanted to talk to all the HRs if they are listening to me right now, the owners or any employee of any company. Agar you know cheeze thodi monotonous ho gayi hain, din raat same routine ko follow karke aise thoda boring ho raha hai, to usme thoda sa tadka lagane ki Radio Olive hai aapke liye. Ji haan. So sometimes aise hota hai ki hum break nahi le sakte apne kaam se, क्योंकि कम ऑन नहीं ले सकते, तो क्यों ना ब्रेक को आपके पास लेकर आया जाए. जी हाँ, रेडियो ऑलिव की टीम कैन कम टू योर ऑफिस एंड वी कैन हैव फन फॉर लाइक वन और टू आवर. मस्त गेम्स खेलेंगे, यू नो चैलेंजेस होंगे, इंटरैक्टिव सेशन होगा और फुल ऑन मस्ती. जी, सो वी हैव बिन टू अ फ्यू ऑफिसेज ऑलरेडी और बढ़िया ऐसे मस्ती करी हमने वहाँ पे, बहुत सारे गेम्स खेले, उनकी वीडियोज़ आप हमारे सोशल मीडिया पर देख सकते हैं. एंड अगर सेम वे आप हैप्पीनेस लाउंज के लिए हमें बुलाना चाहते हैं आपके ऑफिस, तो बस मैसेज कर दो यार 3311063 पर, HL लिख कर मैसेज कर दो, बाकी हम सब देख लेंगे. जी हाँ, आपने किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, एक्चुअली वही तो काम है ना, स्ट्रेस ही तो कम करना है, तो फिर लेना कैसा. सेंडिंग राहत साहब की और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, तेरी और फ्रॉम द मूवी सिंगर्स किंग. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. करण औजला की आवाज में सॉफ्टली ओनली ऑन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. अच्छा, वी ऑल नो अबाउट डेजा वू, राइट? जब कुछ ऐसा होता है एंड देन यू सडनली फील कि यार ये तो पहले भी हो चुका है, आई हैव एक्सपीरियंस दिस अर्लियर एज वेल, या फिर कोई चीज़ देखी और लगे कि आपने ये पहले भी देखा है, या सेम फीलिंग इमोशन महसूस किया है. उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है जामे वू. यस, जे ए एम ए आई एस वी यू, जामे वू, विच मीन्स Never seen. It comes from French. And basically, ये एक ऐसी फीलिंग है कि एक चीज़ जो आप हर रोज़ देख रहे हैं, से आपके घर का दरवाज़ा हर रोज़ देख रहे हैं आप वो, बट सडनली एक दिन आपको लगता है यार ये तो काफ़ी डिफरेंट है, क्या ये हमेशा से ऐसा दिखता था? And this happens to me when I see my picture for a long time, you know? मतलब काफ़ी देर तक अगर मैं अपनी पिक्चर को देखती रहूँ तो मुझे लगता है क्या मैं सच में ऐसी दिखती हूँ? And I start questioning. So that feeling hum sabko kabhi na kabhi hoti hai, and that is called jamais vu. Yes. So when was the last time you felt jamais vu? Pata hai mujhe 3311-1063 par, and stay tuned to Radio Olive. Jio Bindas.
0: Radio

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लेबनीज़ एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.
3: Chuvappu nirathile saariyil njangal ellam danger aanallo.

0: Tanisha.
1: Param Sundari say danger only on Radio 11.6.3 FM. Tanisha, aapke saath bindas mornings chal rahe hain yahan par.
2: Ye hai chalti phirti dictionary.
1: आपने वो कोट तो सुना होगा, व्हेन योर गोल इन लाइफ इज टू एक्सपीरियंस बट नॉट टू रीच द डेस्टिनेशन, यू नो, व्हेन यू आर टेकिंग अ जर्नी फॉर द शियर एक्सपीरियंस ऑफ इट. ये नहीं है कि यार वहाँ पहुँच के मैं, यू नो, आई विल हैव एन एक्सपीरियंस, या फिर ये एडवेंचर करेंगे वो एडवेंचर करेंगे, बट जो जर्नी है उसका भी इक्वली उतना ही मज़ा लिया जा रहा है. सो इस पूरे फ्रेज को सम अप करने के लिए स्पेनिश में एक वर्ड है, दैट वर्ड इज वासिलांदो. VACILANDO. Vacilando, meaning wandering or drifting, especially without a fixed destination or purpose. कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ रास्तों पर निकल जाते हैं. And metaphorically बोल रही हूँ मैं, literally नहीं. And we don't know कि हमें कहाँ पहुँचना है, कोई set goal नहीं है, हम बस चल रहे हैं, going with the flow. And enjoying that flow to the most. That is Vacilando for you. And I think those journeys are the best ones. Usmein hum best memories banate hain. Kya kehte ho, batao mujhe. 3311-1063 par. Stay tuned and Jio Bindas.

0: फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM।

0: Delisha.
1: Shankar Mahadevan, our Kavita Krishnamurthy ki aawaz mein kaise raha from the movie Pukar only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par and Kahrama ne ek baar fir se aapko you know aware karne ke liye warn karne ke liye kaha hai ki koi bhi fraudulent email aa raha hai usme koi bhi link aapko nazar aa rahi hai and you do not know the sender. So aise randomly usko open karke us link pe click nahi kar dene ka hai. They might ask for your details aur agar wo feed kar di uske baad kya hoga phir wo to hum sabko pata chal hi chuka hai. काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं ये स्कैमर्स तो उनसे ज़्यादा स्मार्ट और अवेयर हमें रहना होगा सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट यू नो कोई भी टेक्स्ट आ रहा है व्हाट्सएप आ रहा है एनीथिंग कोई भी सस्पिशियस मैसेज और आपको मेल नज़र आ रहा है कॉल्स आ रहे हैं तो डू नॉट रिसीव दैट डू नॉट ओपन दोज मैसेजेस और लिंक्स ओपन करने से पहले तो 10 बार सोचिएगा ठीक है क्योंकि यार इतनी मेहनत करके हम कमा रहे हैं यू नो वी आर अर्निंग आर लाइवलीहुड ऐसे ही थोड़ी ना जाने देना है जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग केयरलेस फॉर अ मोमेंट सो डोंट डू दैट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट

कल होना उसे माही वे ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. एंड रिमाइंडर देने आई हूँ जी कि अगर तक अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए फॉलो, ठीक है. radioolive.qa इज द हैंडल फॉर आर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. जाकर फॉलो कीजिए इफ यू हैवंट सो फार. एंड यूट्यूब पर भी हैं हम, वहाँ जाकर भी सब्सक्राइब कर लीजिए. क्योंकि जो छोटी छोटी स्निपेट्स आप देखते हैं ना इंटरव्यूज के, कॉन्वर्सेशंस के, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, वो हम फुल वीडियो यूट्यूब पर डाल रहे हैं. तो आप वहाँ जाकर वो सारी कॉन्वर्सेशंस चेकआउट कर सकते हैं और बहुत कमाल कमाल लोगों के साथ काफ़ी इंस्पायरिंग और यू नो काफ़ी अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी. एंड इट माइट गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ. यू नो कभी कभी किसी की भी बातें हमें इंस्पायर कर जाती हैं, राइट. सो चेक इट आउट. और अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो जरूर मुझे बताइएगा. और सुनते रहिए रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम. जियो बिंदास मेरी जान.

0: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

सुखविंदर सिंह साहब की आवाज में अखियों से गल कर गई फ्रॉम द मूवी शादी से पहले ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. मंडे सितंबर 7:09:50 हो चुका है इस वक्त क्लॉक में और मेरे हो गया है जाने का वक्त. जी हाँ, मुस्कान इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू आपकी लाइफ को और भी मस्त बनाने के लिए. और उसके बाद फिर आप सुदेव से मिलेंगे और फिर कशिश से. सो या पूरा दिन सेट है आपका. बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, कुछ भी अगर ऐसे अप डाउन होता है ना तो स्ट्रेस नहीं लेने का, चिल मारने का, ठीक है? क्योंकि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा. अपना ख्याल रखिए एंड स्टे हाइड्रेटेड और लाइट खाना खाएं और बढ़िया रहे. कोई भी बात आपके जहन में है, परेशान करिए, किसी से शेयर करना चाहते हैं, वी आर हियर फॉर यू यार. यू कैन मैसेज अस एनी टाइम. 3311 1063 इज द नंबर और बेटर यू कैन कॉल 4444 1063 पर, ठीक है? बाकी अपना ख्याल रखें. हैव एन अमेजिंग डे टू योर सेल्फ और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

कभी आपने सोचा है कि आज जो चीज हमें फ्रीडम लगती है वही आने वाले टाइम में हमारी चॉइस ही नहीं रहेगी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। गुड मॉर्निंग। आई नो, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो 2040 तक, मान लो अभी 2026 चल रहा है, कुछ करीब 14-15 साल बाद अगर बात करूं तो, मतलब हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें हर दशक में बदल जाती हैं, बस वही बात करूं। आज सुबह सुबह जब मैं ऑफिस से, मतलब घर से ऑफिस आ रही थी, तो मैंने कुछ चीजें से ऑब्जर्व की। मतलब आज हम कहते हैं कि मेरी गाड़ी है, मैं जहां चाहूं जाऊंगी, जब चाहूं ड्राइव करूंगी, लेकिन फ्यूचर में शायद गाड़ी से कहना पड़ेगा कि भाई मुझे घर पहुंचा दे, मैं रास्ते में थोड़ा सा सो लेती हूं। फ्यूचर टेक की एक इंटरेस्टिंग सी प्रेडिक्शन है जो 2040 तक एवरीडे ड्राइविंग का बड़ा हिस्सा जो है वो ऑटोनॉमस व्हीकल्स संभाल सकते हैं, यानी आप डेस्टिनेशन डालोगे और गाड़ी खुद रास्ता बना लेगी, तय कर लेगी बेसिकली। और सोचिए तब ड्राइविंग क्या होगी, डेली नेसेसिटी नहीं, शायद सिर्फ हॉबी, मतलब जैसे गाड़ी चलाना पसंद है बस वही चलाएगा। जैसे आज कोई वीकेंड पर बाइक लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकलता है, वैसे फ्यूचर में लोग बोलेंगे कि आज मूड है, मैनुअली ड्राइव करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर मशीन्स हमें ड्राइव करना, रूट याद रखना, पार्किंग करना, ये सब करना बंद करवा देंगी, तो क्या हम थोड़े से कम इंडिपेंडेंट होंगे, या फिर बस हमारी इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन बदल जाएगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा हमारा काम आसान करती है, लेकिन कभी कभी उसी काम से जुड़ी छोटी छोटी चीजें भी छीन लेती है। सो यू टेल मी, 2040 में आपकी कार खुद ड्राइव कर सकती हो तो आप स्टीयरिंग छोड़ दोगे या कहोगे कि नहीं यार, गाड़ी चलाने का मजा तो अलग ही है, सो आई विल ड्राइव? व्हाट्सएप पर बताइए, सेल्फ ड्राइव या फिर सेल्फ ड्राइविंग? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311063। वेरी गुड मॉर्निंग, जियो बिंदास।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

0: एक टाइम था जब घर में सिर्फ एक टीवी होता था, फिर आया कंप्यूटर, फिर लैपटॉप, फिर स्मार्टफोन, और आज तो हमारी जिंदगी का आधा हिस्सा एक छोटी सी स्क्रीन के अंदर रहता है। लेकिन अब फ्यूचर की एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये है कि शायद स्क्रीन खुद डिसअपीयर होने लगे। मतलब सोचिए, आपको मैसेज पढ़ना है तो फोन निकालने की जरूरत नहीं, आपके ग्लासेस ही बता देंगे कि किसका मैसेज है। आपको मैप देखना है, स्क्रीन पर नहीं, आपके सामने रोड पर डायरेक्शंस दिखाई देंगे। आपको किसी से बात करनी है, ईयरबड्स और वियरेबल डिवाइस काम कर देंगे। टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा आइडिया शायद ये नहीं है कि हमारे पास और बड़ी स्क्रीन हो, बल्कि ये है कि हम स्क्रीन देखें ही क्यों। इसे ब्रॉडली जो है एम्बिएंट कंप्यूटिंग आप कह सकते हो। टेक्नोलॉजी इतनी नेचुरली आसपास मौजूद है कि हमें बार बार डिवाइस निकालकर उसके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम है। आज हम फ़ोन में देखते हैं कि क्या नया है, फ्यूचर में शायद टेक्नोलॉजी खुद हमें बताएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, और तब असली सवाल ये होगा कि क्या टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को आसान बनाएगी या हमारी अटेंशन पर और ज़्यादा कंट्रोल करेगी। सो फ़ोन हाथ में होना अच्छी बात है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी हर जगह हमारे साथ हो तो उससे बचेंगे कैसे? You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। I have lot of questions. Every day जब भी मैं टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ती हूँ या कोई नया आर्टिकल या कोई नई रिसर्च देखती हूँ तो लगता है कि कैसे होगा, बट होगा विद टाइम। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Cool song.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में ग्रोसरीज हो फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा

जिसका हम सबको था इंतजार। आखिर हमें दूसरों की जिंदगी देखना इतना पसंद क्यों है? बिग बॉस वापस आ गया है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। और इस बार एक नाम ने आते ही सबका टेंशन खींच लिया, विच इज मैरी कॉम। लेकिन एक मिनट के लिए कंटेस्टेंट्स भूल जाइए, एक सवाल सोचिए कि हम आखिर इतने लोगों को एक घर में बंद देखकर एंटरटेन क्यों होते हैं? क्योंकि टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो वहां हमारी कोई पर्सनल स्टोरी तो है नहीं, हम उन्हें जानते तक नहीं है, फिर भी कुछ दिनों बाद हम बोलने लगते हैं कि ये वाला बहुत जेन्युइन है, उसने गलत किया, इसको निकल जाना चाहिए। मतलब स्ट्रेंजर्स की जिंदगी देखते देखते हम खुद जज, ज्यूरी और कभी कभी तो फैमिली मेंबर भी बन जाते हैं। सो साइकोलॉजी में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सोशल ऑब्जर्वेशन। इंसान ना नेचुरली दूसरे लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, कौन किसके साथ कंफर्टेबल है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन लीडर बनेगा, कौन ग्रुप बनाएगा। सो बिग बॉस जो है वो बेसिकली इसी ह्यूमन क्यूरियोसिटी को एंटरटेनमेंट में बदल देता है। और इस सीजन में मैरीकॉम जैसी पर्सनालिटी का आना इसे और इंटरेस्टिंग बना देता है। बॉक्सिंग रिंग में डिसिप्लिन, फोकस, कॉम्पिटिशन की दुनिया और अब एक ऐसा घर जहां आपको अलग अलग पर्सनालिटी के साथ रहना है। अब देखना यह है कि चैंपियन बनना आसान है या बिग बॉस हाउस में बिना इरिटेट हुए रहना। आप बिग बॉस देखते हैं ड्रामे के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए या सिर्फ देखने के लिए कि आज किसकी लड़ाई होने वाली है? टेल मी। मेरा नंबर है 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। बाय द वे वी विल टॉक अबाउट मैरीकॉम, ठीक है? स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
4: चीज़ योगर्ट लेबनी
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

0: क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: In association with
2: Nesto Hypermarket, now open at Old Passport Office, Karafa.

0: दिया दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

0: सो वी वर टॉकिंग अबाउट बिग बॉस और मैरीकॉम. मैरीकॉम का ना नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बॉक्सिंग मेडल्स, चैंपियन, ओलंपिक्स. और मैरीकॉम को हम चैंपियन के रूप में जानते हैं, इंसान के रूप में कितना जानते हैं ये अब पता चलेगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. हम किसी इंसान को ना अक्सर उसकी अचीवमेंट से पहचानते हैं, लेकिन सोचिए जब कोई पर्सन इतना बड़ा नाम बन जाता है तो दुनिया उसे इंसान की तरह देखना ही बंद कर देती है. हम कहते हैं ये तो मैरीकॉम है, इन्हें प्रेशर कैसा. लेकिन चैंपियन भी थकता है भाई, चैंपियन भी नर्वस होता है, चैंपियन भी घर के काम पर इरिटेट हो सकता है, और चैंपियन को भी कभी कभी चुपचाप बैठना पसंद होता होगा. और शायद यही वजह है कि बिग बॉस में मैरीकॉम की एंट्री इंटरेस्टिंग है. बॉक्सिंग रिम में जो ओपोनेंट होते हैं उनके सामने होते हैं, रूल्स क्लियर एकदम. लेकिन रियलिटी शो में जो सामने आपके है वो कभी कभी आपका रूममेट होता है और रूल्स हर दिन बदलते रहते हैं. सो मैरीकॉम ने कहा कि वो घर में डिसिप्लिन लेकर आएंगी और चाहती हैं कि लोग उनका एक अलग साइड देखें. मुझे लगता है कि असली क्यूरोसिटी यही है. जब कोई इंसान मेडल नहीं पहन रहा होता तब वो असल में कौन होता है? क्योंकि हम सबकी लाइफ में ना यही होता है, ऑफिस में प्रोफेशनल है पर घर पर बिल्कुल अलग, दोस्तों के साथ हमारा वर्जन एकदम ही अलग हो जाता है. सो लोग आपको आपके काम से ज़्यादा जानते हैं या आपकी असली पर्सनैलिटी से, बताइएगा ज़रूर. नंबर इज सेम 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है लाइफ मस्त है.
1: रेडियो ऑलिव पर

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM। जियो बिंदास

चलो कॉफी पीते हैं, बस ये 5 शब्द, लेकिन इंडिया में इसका मतलब कभी सिर्फ कॉफी नहीं होता। कॉफी के नाम पर मिलेंगे, फिर शुरू होगा, और बता घर पर सब ठीक है, वो जॉब का क्या हुआ, उसका मैसेज आया कि नहीं आया, शादी कब कर रहे हो, और देखते देखते कॉफी ठंडी लेकिन कॉन्वर्सेशन एकदम हॉट होता है। और कतर में तो सीन और भी खूबसूरत है, कॉफी मतलब हो सकता है कि सामने वाला एक्चुअली कह रहा हो। चलो करक पीते हैं और पिछले 3 हफ्तों की पूरी लाइफ अपडेट। मतलब कॉफी यहाँ पर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कड़क इंपॉर्टेंट है। असल में ड्रिंक्स हमारी सोशल लाइफ का हिस्सा है, कॉफी हो, चाय हो, करक हो, हम ये जो यू नो हमारी जो बेवरेजेस है ना, उनके बहाने कनेक्शंस बनाते हैं। कभी कभी हमें एडवाइस भी नहीं चाहिए होती, हम बस कोई हमें बस कोई चाहिए जो बोले कि हाँ यार बता, मैं सुन रहा हूँ। और शायद इसी वजह से कुछ लोग हमारे लिए कॉफी से भी ज़्यादा कम्फर्टिंग होते हैं, क्योंकि उनके साथ बैठकर साइलेंस भी ऑकवर्ड नहीं लगता। सो आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि चलो एक कॉफ़ी या चाय पीते हैं, तो सबसे पहले किसका नाम दिमाग में आता है? किसी दोस्त का, किसी कॉलेग का, या फिर किसी फैमिली मेम्बर का? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब हम ऑफिस में रहते हैं तो हमें किसी ना किसी कॉलीग के साथ चाय पीना पसंद होता है, जब हम ऑफिस से बाहर जाते हैं तो एक दोस्त होता है, जब हम घर पर रहते हैं तो ऐसे सुकून से बैठ के चाय पीने का मन करता है। सो यू टेल मी व्हाट्सएप पे आप मुझे बताओ कि आपके लिए वो कौन इंपॉर्टेंट है जिसके साथ आपको लगता है कि एक कप चाय सब ठीक कर देगी। 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio. Bindas.

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

0: सो कभी कभी ना जो इंसान सबसे कम बोल रहा होता है ना वही सबसे ज्यादा नोटिस कर रहा होता है और यही चीज बबीता सिंह रिपोर्टिंग में इंटरेस्टिंग लगती है। यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। भाई मैंने ये मूवी देखी, निमिषा साजियाल कैरेक्टर है और उनका बबीता, ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन स्टार्टिंग में वो एक ऐसी ऑफिसर नहीं लगती जैसे देखकर आप बोलो कि ये पूरी कहानी बदल देगी, वो लोगों को मतलब खुश करने वाली है, अपनी बात पीछे रखने वाली है, लेकिन जब उसे उसके चाइल्डहुड फ्रेंड की बारे में पता चलता है तो कहानी ना बदल से जाती है। फैमिली उसे सीरियसली नहीं लेती, लोकल पुलिस भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन बबीता सवाल पूछना बंद नहीं करती और यहीं से मिस्ट्री जो है वो धीरे धीरे दूसरी कहानी बन जाती है। और एक ऐसी लड़की जो दूसरों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीते जीते खुद की आवाज़ भूल जाती है। फिल्म जो थी वो ऑलमोस्ट 8 दिन पहले आ चुकी है पर अभी मैंने कल ही देखी, आप अगर चाहो तो Amazon Prime पर ये देख सकते हो। मुझे उसकी सबसे रिलेटेबल चीज़ पता है क्या लगती है कि हम सबकी ज़िंदगी में एक बबीता मोमेंट आता है जब हम अचानक डिसाइड करते हैं कि बस अब मैं हार नहीं मानूंगी, हर बात पर एडजस्ट भी नहीं करूंगी। तो आपका वो कौन सा मोमेंट था जब आपको पहली बार लगा कि यार नहीं बोलना है मुझे, मतलब किसी की बात में नहीं आना है, हर किसी के लिए हाँ नहीं बोलना है। 3311106 इज़ माई नंबर एंड यू टेल मी क्या आपने मूवी अभी तक देखी या फिर प्लान कर रहे हैं कि बस चालू करेंगे। यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

भाई पहली मुलाकात में हम किसी इंसान को कितना समझ लेते हैं। एक पार्टी में आप जाते हो, किसी को पहली बार देखते हो, उसके अच्छे कपड़े देखते हो और सोचते हो कि यार ये कॉन्फिडेंट होगा, बहुत कम बोलता है, सोचते हैं कि एरोगेंट होगा। कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो हम सोचते हैं कि यार अटेंशन सीकर होगा, और अगर बहुत मुस्कुरा रहा है तो हम वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं। यही चीज़ें मुझे ना ग्रेट गैट्सबी के चैप्टर 1 में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। सो ये किताब है, इस स्टोरी का नरेटर जो है वो निक शुरुआत में ही हमें ये आइडिया देता है कि लोगों को जल्दी जज नहीं करना चाहिए, जो हम जजमेंटल हो जाते हैं ना वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मजेदार बात ये है कि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है, निक खुद भी लोगों को जज करना शुरू कर देता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। यानी किताब हमें सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं दिखा रही होती, वो हमारी ओन जजमेंटल नेचर भी दिखा रही होती है। चैप्टर 1 में गैट्सबी खुद बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन उसके बारे में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है और लास्ट में वो दूर खड़ा होकर एक ग्रीन लाइट की तरफ देख रहा होता है। एक छोटा सा मोमेंट लेकिन पूरी कहानी की लॉन्गिंग और मिस्ट्री को संकेत बन जाता है। और अब इसे अपनी जिंदगी में आप रख कर देखिए, कितने लोगों को हमने पहली मुलाकात में जज किया होगा और बाद में पता चला कि अरे ये तो वैसा है ही नहीं। सो आज का सवाल ना बहुत सिंपल है, क्या आप फर्स्ट इंप्रेशन पर भरोसा करते हो, और क्या कभी किसी इंसान के बारे में आपकी पहली राय बिल्कुल गलत निकली है? व्हाट्सएप पर बताइए 3311063 बाय नंबर कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन रॉन्ग था या नहीं। यू वर राइट। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव और ये है लाइफ मस्त है। जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

कुछ किताबें ना ऐसी नहीं होती कि जो आपको कुछ सिखाने आई हैं या आपको बदलने आई हैं, कुछ किताबें बस आपके पास बैठने के लिए होती हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। जैसे ना कोई पुराना दोस्त बोल रहा होता है आपसे कि चलो आज कुछ सॉल्व नहीं करते, बस साथ बैठते हैं, बस वैसी ही ये किताब है। इस किताब के बारे में आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हो रही है। सो ये किताब है मोर डेज एट द तोरुंगा कैफे। इसके बारे में पढ़ते हुए एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसे एक ऐसी वार्म कंफर्टिंग रीड की तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली एग्जॉस्ट नहीं करती बल्कि पीसफुल फीलिंग देती है। कई किताबें ना आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है जिसमें आपको लगता है कि यार इतना इंटेलिजेंट होना तो बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि हम ऐसी किताबों को बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं क्योंकि आज हर चीज़ ना प्रोडक्टिव होनी चाहिए। मूवी देखी, कुछ सीखा कि नहीं देखा भाई, किताब पढ़ी, कुछ टेक अवे था या नहीं था, वॉक की, कितने स्टेप्स हुए, मतलब हर चीज़ में कैलकुलेशन है भाई। कभी कभी बस अच्छा महसूस करना भी इनफ होता है। हर किताब का काम आपको जीनियस बनाना नहीं होता, कुछ किताबों का काम बस इतना है कि जब थोड़ा भारी हो तो आपको दो घंटे के लिए किसी शांत दुनिया में लेकर चला जाए। तो मैं बस आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आपकी वो कौन सी किताब है जिसे पढ़कर आपको लगता है कि बस इसे ख़त्म नहीं करना चाहती, मैं बस पढ़ना चाहती हूँ। सो व्हाट्सएप पर बताइए, 3311063 इज माई नंबर। आई एम श्योर आपने भी ऐसी कोई कम्फर्ट बुक ज़रूर पढ़ी होगी। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, ये है लाइफ मस्त है, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। रेडियो

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jiya
1: Bindas. Time check.
2: Brought to you by
1: Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
0: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
3: मैं हूं अनिल कपूर

0: बचपन में ना एक डायलॉग ऑलमोस्ट हम हर इंडियन बच्चे ने सुना होगा, विच इज टीचर्स से शिकायत कर दूंगी। और ये सुनते ही बच्चे की सारी एनर्जी वापस नोटबुक में चली जाती थी। लेकिन डिसिप्लिन और पनिशमेंट क्या दोनों एक ही चीज है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। कतर में भी अभी पब्लिक स्कूल्स को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। कुछ 3-4 दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने सर्कुलर निकाला था कि स्टूडेंट्स के खिलाफ फिजिकल, वर्बल और मेंटल पनिशमेंट सहित सारी फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट पर जो है रोक लगेगी। मिनिस्ट्री ने बिहेवियरल इशू को एप्रोप्रिएट एजुकेशनल मेथड और अप्रूव्ड पॉलिसीज के जरिए हैंडल करने का जोर दिया है। और मुझे लगता है कि सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, हमारे घर में भी अक्सर ना एक सवाल होता है कि बच्चे को डिसिप्लिन कैसे करें, मतलब डिसिप्लिन कैसे सिखाए। डिसिप्लिन मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि डर से ना बच्चा शायद उस मोमेंट में चुप हो जाए, लेकिन क्या वो सही चीज़ समझ पाता है कि नहीं। अब एक पेरेंट अगर कहे कि ये मत करो क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा, तो बच्चा ना पनिशमेंट से डरना सीखता है। लेकिन अगर कहा जाए कि ये मत करो क्योंकि इससे दूसरे को नुकसान होगा, तो बच्चा रीज़न समझता है। और शायद रियल डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। तो पेरेंट्स, टीचर्स और हम सबके लिए एक सवाल यहां पर है कि आपके बचपन में डिसिप्लिन का सबसे फनी या सबसे स्ट्रिक्ट रूल क्या था? आप मुझे बता सकते हो 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। बाय द वे, जब भी ये बात आती है ना टीचर को शिकायत करने वाली, तो मुझे तो बहुत डर लगता था क्योंकि मेरी क्लास टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। यू टेल मी अबाउट योर टीचर और योर स्ट्रिक्ट बिहेवियर, कि कैसे आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता था। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद

आज है मंडे और यूजुअली मंडे को क्या होता है, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खोलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, एक ट्रेलर देखते हैं, दूसरा ट्रेलर देखते हैं, ये कैसी है रिव्यू पढ़ते हैं, रेटिंग देखते हैं और फिर खोल लेते हैं इंस्टाग्राम और थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं यूट्यूब पर। लेकिन इस हफ्ते ओटीटी पर काफ़ी वैरायटी आ रही है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, Z5 हो या फिर Amazon प्राइम हो, हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलने वाला है। चुंबक आ रही है 10th of September को और नेटफ्लिक्स पर काफ़ी कुछ आ रहा है बेसिकली। इसी के साथ Z5 पर भी प्रतीक गांधी और अरशद बारसी जैसी कुछ बड़े नाम के साथ लेकर आ रहा है और Amazon प्राइम पर भी कुछ बहुत बढ़िया आ रहा है। लेकिन मैं आपको आज रिलीज लिस्ट नहीं दे रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ कि आपका आज का मूड क्या है। अगर दिमाग थका हुआ है तो आपको हैवी थ्रिलर नहीं चाहिए, अगर ब्रेन फुल एक्टिव है तो शायद कोई मिस्ट्री चाहिए, और अगर दिल थोड़ा इमोशनल है तो कोई वार्म फील गुड कहानी, और अगर आप बिल्कुल मेरे जैसे हो तो बस एक चीज चाहिए जो शुरू से ही बोले कि रिलैक्स मैं बोरिंग नहीं हूँ। तो चलिए आज आपके मूड के हिसाब से रिकमेंडेशन लेते हैं। व्हाट्सएप पर बताइए कि आपको क्या सबसे ज्यादा देखना पसंद है, कोई थ्रिलर, कोई रोमांस, कोई कॉमेडी, कोई इमोशनल या फुल टाइम पास जिसे देखकर आपको लगे कि बस देख रहे हैं, कुछ चल रहा है, कुछ आवाजें आ रही है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। बाय द वे आप बताइए कि आप वीक डेज में क्या प्रेफर ज्यादा करते हो। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल। स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट prices पर सिर्फ Nesto Hypermarket में groceries हो fresh food हो या daily essentials सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी profitable Nesto Hypermarket 152nd branch now open in Old Passport Office Algarafa

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: सो मेरे जाने का टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, लंच भी करना है। बाय द वे, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक कहीं से किसी परफ्यूम की स्मेल आई और बिना किसी वार्निंग के दिमाग ने आपको सीधे कहीं 10-15 साल पीछे भेज दिया? किसी के घर पे कोई स्कूल यूनिफॉर्म, कोई बारिश, कोई ऐसा ऑयल जो आपको याद आ गया हो, या फिर कोई पर्टिकुलर परफ्यूम जो किसी इंसान के याद से जुड़ा हो। और मज़ेदार बात तो ये है कि आपको उस टाइम पर पूरी घटना याद नहीं आती, लेकिन खुशबू ने पूरा जो सेंस है ना वो खोल दिया होता है। सो साइकोलॉजी में इसे एक नाम दिया गया है, जब कोई स्मेल बहुत स्पेसिफिक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी को ट्रिगर कर देती है, तो रिसर्चर ऐसा कहते हैं कि स्मेल से जुड़ी मेमोरी अक्सर काफ़ी इमोशनल और विविड हो जाती है। यानी कभी कभी हमारा दिमाग मेमोरीज को वर्ड्स में नहीं बल्कि स्मेल से सेव कर देता है। इसीलिए किसी पुराने इंसान की खुशबू, किसी खास सोप की स्मेल, या फिर गर्म चाय और मिट्टी की खुशबू अचानक आपको कहीं और लेकर चली जाती है। ऐसा जस्ट मेरे साथ अभी हुआ, क्योंकि ऑफिस में किसी ने ऐसा परफ्यूम लगाया हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं तो पहले स्मेल किया हुआ है। और सबसे खूबसूरत बात कि आप उस मोमेंट को दोबारा जी नहीं सकते, लेकिन उसकी खुशबू आपको एक सेकंड में वापस वहीं पर लेकर चली जाती है। सो फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, आप मुझे बताइए कि आपके क्या प्लान्स है। 3311106 इज माई नंबर, ऑफिस है, आई नो मंडे है, अभी तो बहुत दूर है वीकेंड, बट स्टिल खुश रहिए, अपने काम से काम रखिए, अपना पूरा काम कंप्लीट कीजिए, अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और फिर देखिए काम कितना आसान हो जाएगा। फॉर नाउ बाय, टेक केयर विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है, ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये गाना

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ

0: 106.3 FM Gio Bendaz.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर। सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa. Nesto,
0: all that you need. Olive Music Marathon, 1 hour, 1 hour. Non-stop back-to-back gaane.

0: खाना खत्म पैसा हजाम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
2: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे आज किक स्टार्ट करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे हम एक साथ बैठकर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए क्या हाल है, कैसा चल रहा सब कुछ। और यही बोलते हुए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज, और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे एक ऐड के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है? तो ये टोयोटा का एक ऐड था, बहुत पहले निकला था यूएस में। बेसिकली ऐड जो है ऐसे दिखता है कि एक लड़की एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम्हें तुम्हारा वैन जो है, मतलब वैन नहीं ट्रक जो है, काफी कूल लगता है ना, अब देखते हैं कितना कूल लगता है करके एक क्लिफ के ऊपर से उस गाड़ी को धक्का दे देती है। वो गाड़ी लुढ़क लुढ़क के नीचे आके गिरती है और चार पहियों पर लैंड करती है और वहां पे एडवर्टाइजमेंट खत्म होता है। मुझे लगता है हैंड्स डाउन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का वन ऑफ द कूलेस्ट ऐड था ये। इससे कूल ऐड बहुत ही कम देखे हैं मैंने, और यही दर्शाती है कि उस ब्रांड की रिलायबिलिटी कितनी है, कि तुम कहीं पे भी कैसे भी उसे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है करके। मुझे लगता है यार लाइफ में भी ना अपने आप को ना टोयोटा की तरह बनाना पड़ेगा हमें, कि कुछ भी हो जाए हम बस चलते रहे। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Radio Olive Bird. आने वाला गाना, cool song of the hour.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक ऑर्केस्ट्रा का एक परफॉर्मेंस था, और जो ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करते हैं वो अपने हाथ के इशारों से जो है पूरे ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करते हैं। कभी कभी मैं भी सोचता था कि यार काश मैं भी अपने हाथ के इशारों से अपने आसपास की जिंदगी को कंट्रोल कर पाऊँ, मजा आ जाएगा करके। मगर देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपने हाथ के इशारों से हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। बट हाँ, चाइना में एक चीज़ है जो आप अपने हाथ के इशारों से कर सकते हो। वो क्या है उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गाने वेट कर रहे हैं और गाने प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैंने बोला था कि चाइना में हाथ के इशारों से आप कुछ कर सकते हो। क्या है पता है वो? आप अपने हाथ के इशारों से पेमेंट कर सकते हो। तो चाइना में टेंशन करके कंपनी है जो पाम पे करके एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है, जिसमें स्कैनर में आप अपने पाम के सरफेस को रख सकते हैं, जिससे जो है पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली वो स्कैनर जो है आपके पाम के सरफेस पैटर्न को और वेन्स को जो है रीड करता है, और एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ताकि आप अपने पाम को पेमेंट अकाउंट के साथ लिंक कर पाए। उसके बाद आप हाथ वेव कर सकते हैं उस टर्मिनल के ऊपर से, बिना फोन के, कार्ड के और QR कोड के जो है पेमेंट हो सकता है अब। और ये टेक्नोलॉजी जो है बीजिंग के एयरपोर्ट में, मेट्रो लाइन में और बहुत सारे डिफरेंट 7-Eleven स्टोर्स में जो है इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। और ये पाम पेमेंट सिस्टम जो है इसके 50 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, उसके साथ साथ 100,000 प्लस मर्चेंट्स भी आ चुके हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैंने एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट देखा। देखिए, कॉन्टेक्स्ट पहले बता देता हूं। आजकल बहुत सारी कंपनीज ने जो है एक प्रॉब्लम जो है नोटिस की, वो ये है कि जब भी वो रिक्रूटमेंट करते हैं, स्पेशली जब रिमोट इंटरव्यूज या फिर रिमोट रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है, तो लोग जो है AI के थ्रू अपने उस इंटरव्यू प्रोसेस में चीट करते हैं। ठीक है, AI जनरेटेड वॉइस यूज करके वो जो है आंसर्स देते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही थी और कंपनीज बहुत परेशान हो रही थी कि भाई कैसे हम इस चीज को टैकल करें। तो एक कंपनी जो है एक मास्क लेकर आई है। सो बेसिकली आपको कंप्यूटर ऑन करके वो मास्क जो है पहनना है, जिससे आपकी आंखें दिख सकती है बस, और वो मास्क जो है बेसिकली एक रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसा है। तो उस मास्क में देख के पता चल जाएगा कि आगे वाले इंसान के लैपटॉप में क्या क्या दिख रहा है करके। काफ़ी कूल चीज़ ये, चीटिंग रोकने के लिए क्या क्या करना पड़ता है करके, है ना। और जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है आगे, वैसे वैसे चीटिंग करने के तरीके भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे मीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो अपने ऑफिस में एक फन डे स्पेंड करना जहां पे रेडियो ऑलिव की टीम आपके ऑफिस में आएगी, बहुत बढ़िया तरीके से चिल करेगी, आपको एंटरटेन करेगी, रिचार्ज करेगी और रीएनर्जाइज करेगी, तो हैपनेस लॉन्च के लिए रजिस्टर करना मत भूलना। रजिस्टर करने के लिए आपको मैसेज भेजना है HL स्पेस आपकी कंपनी का नाम 3311063 पर और हमारे टीम से एक मेंबर जो है आपकी कंपनी के साथ इन टच आएगा, कांटेक्ट करेगा, बात करेगा, बाकी डिटेल्स जो है शेयर करेगा। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात जो है आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। और आज एक्सीडेंटल इन्वेंशंस में एक ऐसे इन्वेंशन की हम बात करेंगे जिसने सही में क्लोदिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही बढ़िया तहलका जो है मचा दिया था। तो 1856 में 18 साल की उम्र में एक इंग्लिश केमिस्ट जिनका नाम विलियम हेनरी पर्किन था, वो एक सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट बनाना चाहते थे क्विनाइन का। क्विनाइन जो है एंटी मलेरियल इफेक्ट्स के लिए बहुत जाना जाता था और काफी वेल डॉक्यूमेंटेड भी था। तो उन्होंने क्या किया, एनिलीन को एक डिराइव्ड कोल टार के साथ मिक्स किया और थोड़े केमिकल कंपाउंड्स भी डाले। उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें जो है क्विनाइन का जो है एक अल्टरनेटिव मिल गया है, मगर वो एक्सपेरिमेंट जो है वो फेलियर था। मगर उन्हें एक डार्क पर्पल प्रेसिपिटेट मिला जो वाटर में सॉल्युबल है, और उसमें जब उन्होंने एक पीस ऑफ सिल्क डिप किया तो उन्हें पता चला कि ये जो चीज है, जो प्रेसिपिटेट है, इसमें डाइंग प्रॉपर्टीज भी है। ऐसे ही वर्ल्ड का सबसे पहला सिंथेटिक डाई बना जिसका नाम है मोवीन करके। और यही कहानी बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: हाय रेडियो ओलिव, रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान।
4: हम हैं नंबर 1 रेडियो
5: ओलिव। सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
7: This hour is brought to you by
8: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मुझे ना एक सीन याद आ रहा है एक मूवी का, एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी मूवी में एक सीन होता है जब धोनी जो है रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म में ऐसे बैठा होता है, काफ़ी डिजेक्टेड, कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बैठे बैठे बैठे उनके जो चीफ थे वो पास आते हैं, पूछते हैं कि क्या हो गया। तो बोलता है कि सर कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं हो रहा, मैं जहाँ पहुँचना चाहता था वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा हूँ, बहुत स्ट्रक फील कर रहा हूँ करके। तो उन्होंने बोला कि तुम क्रिकेट खेलते हो तो तुम्हें एक फंडा तो पता होगा, तो जब बाउंसर आता है, एक अनप्लेएबल बाउंसर आता है, तो क्या करते हो? तो उसने बोला मैं डक करता हूँ। तो उन्होंने बोला यही करना है, जब लाइफ कुछ ऐसे बाउंसर दे जिसको तुम डील नहीं कर पाते तो तुम्हें ज़रा डक करना है, यानी कि थोड़ा वेट करना है, और जब ऐसा बाउंसर आए जिसमें तुम पुल शॉट मार के छक्का लगा सकते हो, लगा दो फिर बेझिझक, बट कभी कभी वेट करना, पेशेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ तो भाई बाउंसर्स डालते ही रहेगी। तो कौन से बाउंसर को खेलना है, कौन से को लीव करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: Pinas number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas. टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: ऑलिव रिचार्ज।
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑल ओवर के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, जानी तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे, सर्च कीजिए radioolive.qa, और वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, फॉलोइंग दिख रहा है तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कर सकते हैं, पोस्ट देख सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, हमें सुनते हुए एक स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम पे, टैग कीजिए हमें, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, आप उस पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपके पास गिफ्ट जीतने के बहुत बढ़िया मौके भी हैं। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: जनक जनक जन तबक तबक तबक खाना के खाना के खान।

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, जबरदस्त इवनिंग जो है शुरू होने वाला है, तो आप भी तैयार हो जाइए, मैं भी जरा निकलता हूँ। जाने से पहले आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algara।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है.

0: यू गॉट अ।
1: अरे यार वो अमेजिंग को और क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, क्या है वो वर्ड? जबरदस्त। हां जी, जबरदस्त इवनिंग आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिफ पर मैं हूँ आपकी कशुशन शो, आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। एंड आपके शाम को मैं मजेदार बना के रहूंगी, एटलीस्ट देखो कोशिश तो मैं करूंगी। बाकी बहुत सारी चटपटी बातें, चटपटी गॉसिप, अपडेट्स सब आपके लिए ऐसे चुन चुन के अपने बस्ते में यानी अपने बैग में भर के मैं लेकर आई हूँ, सब आपको बताऊंगी एक एक करके। लेकिन आपको बस छोटा सा काम करना है, पहले मुझे हाय हेलो गुड इवनिंग जो है वो विश कर देना है 3311063 पर, एंड उसके बाद स्टे ट्यून रहना है वॉल्यूम बढ़ाकर, क्योंकि बहुत अमेजिंग गाने और बहुत अमेजिंग बातें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो स्टे ट्यून रहो, वॉल्यूम बढ़ाकर फिलहाल गाने एंजॉय करो। थोड़ी सी देर में मौसम का क्या मामला रहने वाला है उस पर बात करते हैं हम। स्टे ट्यून, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 5:07, दैट इज 5:07। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
2: रेडी
3: टू लर्न,
2: टू प्ले, टू ग्रो।
4: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
5: मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: रेडियो ओलिव नंबर वन।
7: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग। सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास।
8: Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी वो दोस्त जरूर होंगे जो पहले जो है शुरू शुरू में ऐसे लगता है कि बहुत सपोर्टिव हैं आपके, लेकिन उसके बाद अपने असली रंग दिखाना शुरू करते हैं एंड बीच बीच में उनका एक अलग रूप जो है वो हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये जो मौसम है ये उसी दोस्त की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि कई बार हमें खुश कर देता है कि अरे चलो ठीक है ये जो गर्मी है ये जाने वाली है, एंड कभी कभी टेम्परेचर वापस बढ़ा देता है। तो वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कॉन्स्टेशन शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, तो इस वक्त 39 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस था और आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 33 डिग्री सेल्सियस तक। एंड आज जो है उम्मीद तो इसी बात की थी कि यार देखो थोड़ा टेम्परेचर और कम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बल्कि 2 डिग्री और बढ़ गया। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जिस हिसाब से तारों और सितारों की ये जो मेल झोल चल रहे हैं इसके बाद जो है टेम्परेचर आराम से गिर जाएगा, लेकिन गिर नहीं पा रहा है। ये बिल्कुल बैलेंस अपना मेंटेन करके रखे है। देखिए, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस होना हो, ये जो टेम्परेचर है इसने अपना बैलेंस मेंटेन करके रखा है। इसी बात पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अमेजिंग वाला गाना सुना देना चाहिए। सो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ। बाकी इन तारों सितारों के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।
1: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
3: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

देखिए मेरे गूगल और सितारों की ना बात बन नहीं पा रही है. ये गूगल कुछ और कहता है, ये सितारे जो है ये कुछ और कहते हैं. वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कसूजन. शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है. अब देखिए कतर कैलेंडर हाउस ने जो है अनाउंस किया है अल जबा जो स्टार है उसकी राइजिंग, यानी 6 सितंबर को जो है ये जो ट्रेडिशनल ऑटम पीरियड है उसके शुरू होने की बात जो है वो की जा रही है. जो पीरियड है ये 14 डेज चलता है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. डे टाइम में गर्मी रहती है लेकिन फिर भी थोड़ी सी बारिश के आसार आ जाते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ जाता है. एंड हार्वेस्ट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए भी ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पीरियड होता है. मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी जो है इस टाइम पे थोड़ी कम होगी, लेकिन जिस हिसाब से वेदर फोरकास्ट मेरी गूगल पे दिखा रहा है ऐसा कुछ लग नहीं रहा है. लेकिन लेट्स सी, लेट्स होप, क्योंकि हर साल जो है इस टाइम से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो मे बी आगे जो आने वाला टाइम है वो हमारे लिए थोड़ा सा कूलर हो सकता है. सो बस इसी होप के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे गाने की तरफ बढ़ना चाहिए. एंड अगर आप लोग अभी बाहर हैं एंड सनसेट होने वाला है सो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, मुझे जल्दी से जो है एक प्यारी सी पिक्चर जो है सनसेट की भेज दीजिए, क्योंकि आपकी ही फ़ोटोज़ को मैं अपना वॉलपेपर बनाती हूँ. सो 3311060 पर प्यारी प्यारी खूबसूरत फोटोज आसमान की, सुर्ख लाल आसमान की मुझे भेज दीजिए, क्योंकि इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो में आप ही मेरा एक सहारा है. स्टे ट्यून्ड और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी गजल एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग. वेलकम जी, कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा लंबा वक्त हो गया ना, गैप थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़े फ्लो फ्लो में ज्यादा गाने आपको मैंने सुना दिए. आप लोगों के मैसेजेस जो है वो मैं पढ़ ही नहीं पाई. सो जल्दी जल्दी, सबसे पहले तो आप सबने जो मुझे प्यारी प्यारी फोटोज भेजी है, जो प्यारे प्यारे मैसेजेस किए हैं वो पढ़ लेते हैं, वो देख लेते हैं. तो सब्यसाची जी ने सबसे पहले तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी फोटो भेजी है, थैंक यू सब्यसाची. उसके बाद शफीक जी ने बहुत ही अच्छी, सच में वॉलपेपर वर्दी एक फोटो भेजी है सनसेट की. सच में ऐसा लग रहा है कि यार जो सन है वो सेट हो रहा है. एंड हमें भारत सुजुकी जी ने भी एक बहुत ही प्यारी फोटो भेजी है. गाड़ियाँ मुझे ज़्यादा दिख रही है सन से ज़्यादा. एंड उसके बाद वंशी कृष्णा जी ने जो है वो हमें भेजी है सनसेट की फोटो, दैट इज रियली नाइस. सो थैंक यू सो मच आप सबका मुझे जो है अपनी नजरों से जो है बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच. अब देखिए, आपने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगी. सो इसीलिए बॉलीवुड के सारे फैंस के लिए जो है हम थोड़ी सी देर में चुटकी भर सॉन्ग वाला जो गेम है वो खेलने वाले हैं. सो जल्दी जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाकर जो है अपने कानों को जो है एकदम रेडी कर लो इस गेम के लिए. फिलहाल आपके लिए क्या कमाल है गाना जो है आरएफ के रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए. थोड़ी सी देर में खेलेंगे हम आज का कॉन्टेस्ट, नॉट कॉन्टेस्ट, इट्स कॉन्टेस्ट, बिकॉज आपके कान जो है उसमें टेस्ट होने वाले. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 6:11 दायरे 6:11 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
2: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों
3: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
2: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
3: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले
2: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू
4: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
5: Mehmani Kapoor, Radio Olive, you're with us.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
7: Radio Olive, I'm a number one.
8: बातें नहीं, energy का booster मिल रहा है. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त evening.
9: जबरदस्त evening. मेरे भाई.
8: सिर्फ Radio Olive पर.
9: जबरदस्त evening.
8: Jio Bindas.
10: Zabardast evening. Make you drive golden with.
11: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
12: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: यार ये वाला गाना जो है किसी अम्यूजमेंट पार्क का गाना नहीं लगता है, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में मैंने कुछ ना कुछ तो ऐसा सुना है जो ऐसा साउंड करता था। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल एफएम, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा के रखा है। अब देखो यार, हम इंडियंस की ना, बल्कि इंडियंस की ही नहीं, हम देसीज की ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि हम कोई भी गाना सुनते हैं तो हमने ये गाना पहले कहाँ सुना है या कौन सी लैंग्वेज में सुना है या इस गाने की जो ट्यून है वो कौन से गाने से मैच करती है, ये हमें बताना ही होता है, हमें सोचना ही होता है। और जब तक हम ये डिस्कवर नहीं कर लेते कि ये हमने गाना कहाँ सुना है या ये ट्यून जो है कौन से पुराने गाने से या किसी और लैंग्वेज के गाने से मैच करती है, तब तक हमें ना ऑक्सीजन मिलती ही नहीं है। तो बस ऐसे ही जो है ओजी म्यूजिक फैंस के लिए जो है हमारा अगला गाना है, गाना नहीं अगला कॉन्टेस्ट है चुटकी भर सॉन्ग, जहां मैं आपको एक चुटकी भर सॉन्ग सुनाऊंगी एंड आपको जो है मुझे सुन के बताना है कि आखिर ये जो गाना है ये है कौन सी मूवी का और इस गाने का नाम क्या है। सो आज का गाना तो बहुत ईजी है, कल मैंने आपको निबोड़ा निबोड़ा जो है वो पूछा था एंड सबने बहुत सारे आंसर दिए थे, सो आज वाला तो आई एम श्योर कि आपको पता ही होगा। ऑफकोर्स अगेन ऐश्वर्या राय का स्पेशल गाना है, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो एंड मुझे बताओ कि क्या ये गाना आपको पता है।
1: सुन रही है

0: 103.3 रेडियो ऑलिव पर चुटकी भर सॉन्ग कॉन्टेस्ट में ये वाला गाना आज आपको पहचानना है। 3311063 इज द नंबर। जल्दी से अपने आंसर्स जो है वो मुझे इस पे व्हाट्सएप कर दो, ऑडियो नोट भेज दो या टेक्स्ट कर दो, लेकिन अब मुझे पता है कि आप ये गाना जो है वो पहचान चुके हैं। एक बार और सुनना है तो मैं फिर से आपको सुना देती हूँ। अब तक तो पहचान गए होगे। जल्दी से मैसेज कर दो 3311063 पर। फिलहाल एक कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इसे एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास.
4: Zabardast evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: बंटी और बबली का एक और बैंगर ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। एंड बंटी एंड बबली का जो पूरा एल्बम है, मतलब इस मूवी के हर गाने पे आप वाइब ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी सोशल मीडिया पे इस मूवी का एक ट्रैक जो है वो काफी वायरल हो रहा था, धड़क धड़क वाला, देखी चांद को चखना है वो वाला गाना। ओ मतलब मैंने उसको इस, मुझे जितनी रील मेरी फीड पे आ रही थी मैंने सारी की सारी रील्स जो है सेव कर ली कि बनाऊंगी, लेकिन मेरी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है ना, एडिटिंग मुझे आती नहीं है, शूट मैं खुद की वीडियो कर नहीं सकती खुद, तो रह जाता है वो हमेशा। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल एक गाना जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि यार ये गाना जो है बताओ कौन सा है, चुटकी भर सॉन्ग में, चुटकी भर सॉन्ग यानी थोड़ा सा आपको एक चंक सुनाया था मैंने गाने का एंड आपको मुझे ये बताना था कि ये गाना जो है ये कौन सी मूवी का है एंड इस गाने का जो है नाम क्या है। तो एक और बार सुन लो, आपको मैंने वैसे जैसी मैं बातें कर रही हूँ आपको समझ ही आ गया होगा।

समझ तो गए होंगे आप, बंटी और बबली मूवी के एल्बम की बात कर रही हूँ। तो ये जो गाना है ये भी ऑफ कोर्स उसी एल्बम में से है, एंड बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही सही आंसर दिया है। सबसे पहले तो राजीव हक जी ने जो है आंसर दिया है, हाई द सॉन्ग इज फ्रॉम बंटी एंड बबली एंड ऐश्वर्या राय अपीयर जस्ट फॉर दिस सॉन्ग एग्जैक्टली। एंड बच्चन फैमिली में से अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन तीनों को हमने इस गाने में देखा था, सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमें लगा है ये गाना। एंड उसके बाद द नेम ऑफ द सॉन्ग इज खजरा रे फ्रॉम द ओल्ड बंटी और बबली मूवी, बिल्कुल सही एपी जी ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद अब्दुल रहमान जी ने भी लिखा है, हाय कशिश जी द सॉन्ग इज खजरा रे, सो या थैंक यू सो मच। उसके बाद आसमा जी का एक ऑडियो नोट है जो मैं थोड़ी सी देर में सुनने वाली हूँ। एंड उसके बाद हमें जो है कजरारे सॉन्ग जो है बिजनेश राणा जी ने जो है वो भेजा हुआ है, बिल्कुल सही थैंक यू सो मच। इसरा जी ने भी एक ऑडियो नोट भेजा है जिसे हम थोड़ी देर में सुनेंगे। अगर आप लोगों ने भी अभी तक आंसर नहीं किया है तो अभी आपके पास मौका है, आप कर सकते हैं 3311063 और ये बता सकते हैं कि देखिए आप थोड़ा लेट हो गए बताने में लेकिन आपको पता है, सो जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए 3311063। पर फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना गरम मसाला मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो मैं अपनी अदा लेके जरा जाती हूँ, आप ये गाना एंजॉय।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मजराती।
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलीशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास।
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

देखिए रब्बा जानता है एंड मैं जानती हूँ और अब आप सबको भी पता लग जाएगा कि जुबिन नौटियाल जी के बाद अगर कोई बहुत अमेजिंग सिंगर हमारे पास है जो हमें पता है तो वो जो है इमाज जी हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार मैंने ना थोड़ी देर पहले आपको एक गाना सुनाया था। हाँ जी गाना ये वाला गाना

से पूछा था कि इस गाने का जरा नाम बता दीजिए और मूवी का नाम बता दीजिए, तो आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ ऑडियो नोट्स भी आए थे मेरे पास जो मैं पहले नहीं सुन पाई थी। फिर आप लोगों से बातचीत करने के बाद, आंसर्स बताने के बाद मैंने इन वॉइस नोट्स को सुना, एंड आप लोगों की बदकिस्मती है कि आप ये वॉइस नोट नहीं सुन सकते, वरना आप इमाद जी ने जो इतना खूबसूरत ये गाना गाया है वो मिस नहीं करती। मतलब अगर आपकी किस्मत अच्छी होती तो इमाद जी ने ऑडियो नोट भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हेलो कशिश जी, एंड ये गाना जो है कजरारे कजरारे है, एंड उन्होंने पूरा गाना गाया है, पूरा नहीं मतलब उन्होंने गाना गाया है, एंड ओ माय गॉड आई किड यू नॉट इमाद यू सिंग रियली वेल। एंड अस्मा जी ने भी जो है वो हमें एक ऑडियो नोट भेजा जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि हमें बच्चन फैमिली इसमें मिली देखने को इस गाने में, एंड इट्स अमेजिंग, एंड मुझे ना बहुत मज़ा आता है जब आप लोग मुझे ऑडियो नोट्स भेजते हो, एंड जितना

0: अगर कोई इंसान अपने रिलेशनशिप में लगाए ना तो रिलेशनशिप्स कभी फेल ना हो. वैसे आपके लिए भी मैं कुछ लेकर आई हूँ. अगर ये भी रिलेशनशिप वाले लोग कर रहे हैं लगे ना तो सच में रिलेशनशिप्स बहुत लंबे चलेंगे. और वो है गाने डेडिकेट करना. सो आपके लिए एक एकदम फ्रेश वाला गाना यानी ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर मैं लेकर आई हूँ आपको सुनाने के लिए. कॉकटेल 2 मूवी से जब तलक गाने का नाम है. सो जब तलक आप ये गाना इंजॉय करेंगे तब तलक मैं आपको याद करती रहूंगी. थोड़ी सी देर में जितनी अपडेट्स आपके जानने के लिए बहुत जरूरी हैं वो आ जाएंगी आपकी रेडियो सेट्स पर. तो वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना और उसके बाद ऑलिव अपडेट्स एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑल

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट prices पर सिर्फ Nesto Hypermarket में groceries हो fresh food हो या daily essentials सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी profitable Nesto Hypermarket 152nd branch now open in Old Passport Office Algarafa

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Time check.
2: Brought to you by
1: Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor.
3: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का स्टूडियो क्लॉक में. इस वक्त हो रहे हैं 7:10, दैट इज 7:10. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
0: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
4: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह. स्टे ट्यून्ड.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive, I'm number one.
7: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग. सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास.
8: Zabardast evening. Make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

कुछ भी हो यार, शाहरुख खान के गाने सुनने के बाद एक अलग टाइप की एनर्जी सी आ जाती है मेरे अंदर। ऐसा लगता है कि बस इसी गाने को अलार्म लगा लूं, लेकिन फिर जैसे ही ये गाना अलार्म में लगता है सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ अलग सा हो जाता है। समझ रहे हैं आप? नहीं, आप नहीं समझे क्योंकि आप मेरी तरह आलसी नहीं है। यू आर नॉट लेजी। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, मुझे जो है हर वक्त डांट इसी बात पर पड़ती है, मतलब घर पर भी पड़ती थी एंड अभी भी मम्मी मुझे इसी बात पर जो है काफ़ी बार बोलती है कि यार तुम कपड़े फोल्ड करके क्यों अलमारी पर नहीं रखती हो, तुम्हें कपड़े फोल्ड करने चाहिए। एंड मैं, मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो धुले हैं, उन्हें मैंने आयन किया है एंड मैंने पहन लिया है, मैं उन्हें हैंगर पर टांग सकती हूँ, लेकिन उन्हें फोल्ड करके क्यों रखना है? मतलब मैं ये जो है ये पूरा का पूरा ओरिगैमी करूँ, मतलब ऐसे जैसे पेपर फोल्ड करके हम पहले पंखा बनाते थे, बोट बनाते थे, वैसी चीज़ करूँ अपने कपड़ों के साथ एंड फिर उस पर वो क्रीज वाली लाइन आ जाए, मुझसे फोल्ड नहीं होता है। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी वालों ने ये डिसाइड किया कि हम तुम्हें फोल्ड करने से प्रॉब्लम है, हम तुम्हें जो है फोन भी फोल्ड वाला देंगे। वेरी नाइस। सो अब एप्पल का, जहाँ पर सितंबर आ चुका है तो एप्पल का जो है इवेंट होने वाला है एंड उसमें लॉन्च की बात की जा रही है। सो ऐसे स्पेक्यूलेशन लग रहे हैं कि एप्पल जो है अपना नया फोल्ड जो है

0: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

यार इतने अच्छे अच्छे गानों का भी ना मीम बन जाता है, उसके बाद वो गाने सुनने में जो है मजा नहीं आता है। मतलब मजा आता है, लेकिन जब भी अभी गाना चलता है ना, मेरी आंखों के सामने वो जो क्रिंज यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियोज आते थे ना, वो आने लग जाते हैं। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कजिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ। एंड प्रेयर टाइम से पहले जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि एप्पल हो सकता है कि अपना फोल्ड जो डिवाइस है वो लॉन्च कर दे। सो एक बुक जो है वो फाइनली रिवील हो सकती है, ऐसे स्पेक्यूलेशन जो है वो लग रहे हैं कि यार एक बुक काइंड डिवाइस जो है, फ़ोन नहीं, टैबलेट या फ़ोन के बीच वाली कोई चीज़ जो है वो एप्पल लॉन्च कर सकता है इस इवेंट पर। एंड फोल्ड या जो फ्लिप फोन है उनके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अजीब सा ही हुआ है, बिकॉज मेरे डैड बहुत बड़े फ़ैन हैं फोल्ड और फ्लिप फ़ोन के। एंड रिसेंटली उनके पास एक फ़्लिप फ़ोन था एंड उसकी स्क्रीन जो है वो ख़राब हो गई, एंड उन्होंने परेशान होने के बजाय कहा यस, क्योंकि अब वो जो है फोल्ड फ़ोन ले सकते थे। सो उन्हें जो है बेसिकली एक बूजी, एक थोड़ा सा फैंसी, जो थोड़ा सा डिफरेंट लगे लोगों के बीच में, वो वाला फ़ोन लेने का काफ़ी शौक है। लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूज थे कि उन्हें एप्पल का फ़ोन लेना चाहिए या फिर उन्हें फोल्ड फ़ोन लेना चाहिए। लेकिन अगर एप्पल जो है अगर ऐसा कुछ लॉन्च करता है, सो ऐसे लोग जो एप्पल के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जिन्हें एप्पल से बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन उन्हें फ़ोल्ड भी ट्राई करना है, उनके लिए एक बहुत बड़ा यू नो माइलस्टोन हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो भागम भाग मच जाएगी यार, सब लोग जो बोलेंगे कि यार हमें भी ये फोल्ड वाला डिवाइस चाहिए, हमें भी फोल्ड वाला डिवाइस चाहिए। सो आपको क्या लगता है कि क्या एप्पल इस बार ये जो लॉन्च होने वाला है इसमें कोई फोल्ड डिवाइस लॉन्च करेंगी? बताइए मुझे 3311063 पर। फिलहाल भागम भाग से याद आया, भागम भाग का एक बहुत ही अमेजिंग वाला ट्रैक नीला श्रीधर की आवाज में आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास। All my people just be rolling up on

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: From vacation in your hometown, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में ग्रोसरीज हो फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा
2: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
5: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 एफएम रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

देखिए जी, खुशी और गम जो है ये एक सिक्के के दो पहलू है, एंड ये डिपेंड करता है कि आपने सिक्का कितनी जोर से उछाला है ना, आपने मन में क्या मैनिफेस्ट किया है कि आपको हंसी मिलेगी, खुशी मिलेगी या मिलेगा थोड़ा सा गम। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, आपको हंसने खेलने का मौका जो है वो मैं यहाँ पे अपने शो में तो देती रहती हूँ, गेम्स भी खिलाती रहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिस जाते ही जो है एक स्ट्रेस का माहौल आ जाता है, टारगेट्स दिख जाते हैं एंड अपने आप ऐसे लगता है कि यार कुछ फन होना चाहिए, रेजुविनेट होने के लिए कुछ तो चाहिए। बस इसीलिए देखिए रेडियो ऑलिव जो है हैप्पीनेस लाउंज लेकर आपके ऑफिस में आ सकता है, जहां पर बहुत सारा फन, फॉलिक, मस्ती और मजा होगा, आपको एंटरटेन करेंगे रेडियो ऑलिव की टीम एंड रेडियो ऑलिव के आरजे। सो अगर आप मैनेजर हैं या एक बिजनेस ओनर है, सो आप रेडियो ऑलिव की टीम को अपने ऑफिस में और अपनी वर्क स्पेस में इन्वाइट कर सकते हैं, तो हम आ जाएंगे अपनी गेम्स लेकर आपको बहुत सारा फन कराने के लिए। 3311063 पर आप मैसेज कर सकते हैं।

इस मूवी का जो नाम है, इस मूवी का जो काम है, वो बेसिकली थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजिंग सा नहीं लगता? तू मेरी, मैं तेरा, तू मेरी, मैं तेरा। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल फॉर, मैं हूं आपकी कसुसन शो, आपके लिए लेकर आ गई हूं जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। एंड मिर्जापुर के जितने भी फैंस हैं, मतलब मिर्जापुर जिन्होंने सीरीज देखी है और अब वो जो है मूवी देखने के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा है यार मूवी को। मतलब मैंने जितने भी अभी तक पढ़े हैं रिव्यूज इंडिया में, उनका कहना ऐसे ही है कि यार देखो मिर्जापुर का सीरीज जो है वो वैसे ही खराब हो गया था सेकेंड सीजन और थर्ड सीजन में, लेकिन फर्स्ट सीजन बहुत ही अमेजिंग था। सो इस मूवी को जो है वो उस फर्स्ट सीजन में ही रखा गया है। एंड ये मूवी कोई कंटिन्यूशन नहीं है सीरीज का, या ऐसा भी नहीं है कि सारे एपिसोड्स को काट के ही एक मूवी बना दी गई है। ये एक स्पिन ऑफ है, बेसिकली सिक्स्थ और सेवेंथ एपिसोड से शुरू होकर वहीं पर एंड हो जाने वाला एक किस्सा है, बेसिकली स्पिन ऑफ बोल सकते हैं हम इसे। एंड कुछ लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, बिकॉज कुछ कैरेक्टर्स जो है वो एकदम दिल में बसे हुए थे। आज भी हम मीम में इन जो है कैरेक्टर्स को यूज करते ही करते हैं। सो काफ़ी सारे लोगों को अच्छी लग रही है मिर्ज़ापुर मूवी। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि यार ये जो तरीका है ना, ये जो एक सीरीज की एक मूवी बना दी है इन्होंने, ये एक नई शुरुआत है कि अब जो है इन्होंने ये शुरू कर दिया है, अब ये बहुत सारे सीरीज के साथ ऐसा होता हुआ दिखेगा। सो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपकी कोई ऐसी फेवरेट सीरीज है जिसे आपको लगता है कि यार एक 3 घंटे की या 2 घंटे की मूवी थिएटर में रिलीज करनी चाहिए बीच के किसी स्टोरी की, या कोई स्टोरी लाइन क्यूरेट करके उन कैरेक्टर्स के साथ, तो वो कौन सी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखो यार फ्रेंड्स जो है वो एक ऐसा शो है जिसमें मुझे लगता है कि यार एक 3 घंटे 2 घंटे की मूवी वैसे जस्टिस नहीं कर पाएंगे, बट यही चैलेंज है कि कैसे एक अच्छा सा यू नो प्लॉट बनाकर इस मूवी को बनाया जाए। सो फ्रेंड्स इज समथिंग जो मैं चाहती हूँ कि एक मूवी में बन के मुझे दिखे, जो कि अब पॉसिबल नहीं है ऑफ कोर्स, बट एआई है, कुछ भी हो सकता है। आप मुझे बताइए आपको कौन सी सीरीज या कौन सा ऐसा शो है जिसकी मूवी देखनी है, उन कैरेक्टर्स की मूवी देखनी है। 3311063 पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। फिलहाल विशाल मिश्रा की आवाज में एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Time check.
2: Brought to you by
1: Danat Al Fahad, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 8:11 दैट इज 8:11 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
4: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में ग्रोसरीज हो फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा

0: रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
2: रेडियो ऑलिव नंबर वन।
3: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: समथिंग स्पेशल अबाउट बॉलीवुड के पुराने गाने और जब उन्हें रिक्रिएट किया जाता है जैसे वो है वैसे ही, मतलब किसी नए गाने में जो है पुराने गाने का जो हुक है वो डाल देना, दैट्स सो कूल। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाया हुआ है। अब देखिए आवारापन 2 जो है वो कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी, मतलब कुछ लोग मतलब 2-3 लोगों को बहुत अच्छी लगी एंड बाकी सब लोगों को उतनी कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि पहली वाली जो आवारापन थी वो उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। तो इमरान हाशमी का ये जो कमबैक है ये उतना ज़्यादा खास नहीं लग पाया, बिकॉज अब कुछ सर्टेन रोल हैं जिसमें हमने जो है इमरान हाशमी को एक्सेप्ट कर लिया है, वो बहुत अच्छे लगे हैं हमें। अब थोड़ा सा मुश्किल होगा उन्हें पुराने वाले अवतार में वापस एक्सेप्ट करना, लेकिन इसी कंफ्यूजन के बीच में ये खबर आ रही है कि जन्नत 3 जो है वो अब हमें दिख सकती है। हाँ जी, जन्नत पार्ट 2 को भी बहुत प्यार मिला था, लेकिन अब जन्नत पार्ट 3 जो है वो हमें देखने को मिल सकती है एंड इमरान हाशमी कम बैक कर सकते हैं। यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हो रहा है। वैसे थोड़ी देर पहले जो है मैंने आपसे ये पूछा था कि मुझे ये बताइए कि अगर किसी सीरीज का अगर मूवी बननी हो तो कौन सी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान हाशमी जी की मैंने बात करी है एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं बैट्स ऑफ बॉलीवुड, बैट्स ऑफ बॉलीवुड की एक मूवी बना दो, मतलब लास्ट में जो क्लाइमैक्स सीन था वो जो मूवी थी उसका एक मूवी बना के आप डाल दीजिए थिएटर्स में, सबको बहुत पसंद आएगी एंड इमरान हाशमी जी के लिए एक स्पेशल जगह रखिएगा। आपको क्या लगता है बताइए। वैसे थोड़ी सी देर में हम जेंजी डिकोडिंग में एक जेंजी वर्ड जो है वो डिकोड करेंगे, आजकल क्या चल रहा है जेंजी डिक्शनरी में। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ कलियों का चमन।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

फन मूवी का चित्रा की आवाज में ये टाइटल ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफर। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, आई एम श्योर आप अगर मिलेनियल हैं तो आपका मजाक उड़ाने वाली जेंजीज आपके पास जरूर होंगे, और अगर आप जेंजी हो तो आपका मजाक तो पूरा इंटरनेट उड़ा रहा है, आपके सिर्फ ऑफिस वाले आपके घर वाले नहीं उड़ा रहे हैं। सो जेंजीज देखो, वैसे तो मजाक उड़ना नहीं चाहिए लेकिन हरकतें भी करते हैं कभी कभी थोड़ी सी मजाक उड़ने वाली। अब जेंजी डिकोडेड में आज जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ये कोई वर्ड नहीं है, ये कोई स्लैंग नहीं है, ये जस्ट अल्फाबेट है। सो जेंजी डिकोडेड में आज हम बात कर रहे हैं क्यू क्यू की। हाँ जी, अल्फाबेट क्यू क्यू दो बार लिखा हो कैपिटल में, और ये अब आप किसी जेंजी से चैट करें तो आपके चैट बॉक्स में दिख भी सकता है। बिकॉज आजकल रोने वाले इमोजी की जगह यानी क्राई इमोजी की जगह लोग जो है क्यू क्यू वाला इमोजी यूज कर रहे हैं, जेंजीज यूज कर रहे हैं। बिकॉज वो क्यू क्यू जब लिखा होता है ना तो वो आंसू वाली आंखों की तरह दिखता है, यानी क्राई, आपने ऐसे क्राई किया है वैसी वाली आंखों के साथ दिखता है। सो आजकल जेंजीज अपना इमोशन जो है वो दिखाने के लिए क्यू क्यू यूज कर रहे हैं। सो अब अगर आपके चैट पे कोई जेंजी जो है क्यू क्यू लिखे तो ये मत समझना वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों क्यों बताओ मुझे क्यों क्यों, वो जो है रो रहे हैं। फिलहाल जो एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, मुझे पता है आप लोग भी अभी ये सुनने के बाद मुझे क्यू क्यू वाला इमोजी भेजना चाहते हो। 3311063 पर जल्दी से क्यू क्यू वाला इमोजी भेज दो ताकि ऐसे ही और जेंजी वर्ड जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिलहाल मुझको याद सताए तेरी फिर हेरा फेरी मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: ऐसे लिरिक्स लिखने के बाद जो है किंग जी ने अपनी कलम जो है वो तोड़ दी है, उन्होंने पेन जो है वो फ्रेम करा के रख लिया है कि इतने अच्छे लिरिक्स लिखने के बाद जो है अब इस पेन से और कुछ बुरा नहीं लिखा जाएगा। पता ही यार आजकल के रैपर जो है वो पहले डिस्ट्रैक्ट लिखते हैं, यानी दूसरों की बुराई करते हुए डिस करते हैं लोगों को, और उसके बाद ऐसे अमेजिंग लिरिक्स लिख के हमें खुश भी कर देते हैं। देख रहे हैं ये बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं आपसे ही, बस आपका लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं हो रहा है। खैर वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसुशन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बना रही थी मैं। अब यहाँ से मेरे जाने का वक्त आ गया है, आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया, लेकिन जाते जाते वही कहूँगी जो हर रोज कहती हूँ कि गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे मिस करते रहना, ठीक है। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आप मुझे जो है ढूंढ सकते हैं, मैं आपको मिल जाऊंगी, सभी रेडियो ऑलिव के आरजेज भी मिल जाएंगे, तो देरी किस बात की है, जल्दी से जाओ। बाकी नंबर आपको याद हो ही जाना चाहिए अब तक 3311063। बाकी आपकी कशिश यहाँ से जा रही है, आप जो है ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर इंजॉय कीजिए, बाकी स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बंदा स्टारा, बाय बाय, टेक केयर।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, Ghana.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मज़राती।
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
3: मिल्क, चीज, योगर्ट, लेबनी
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मज़राती है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।

0: ये है मिडनाइट लाउंज
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Yeah, midnight love.
2: Yeah, midnight.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: Midnight Lounge.
1: ये है Midnight Lounge.
2: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials. सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch, now open in Old Passport Office, Algarafa.
3: Nesto, all that you need.
4: आप सुन रहे हैं Radio Olive, 106.3 FM. Geo Bindas 106.3.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

0: चांदनी रातें, चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive, Gio Binda.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Olive 106.3 FM Gio Bendaz. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।